लम्हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

0: Τώρα είμαστε εμεί οι Δάρτοβιε για πότε σα πάρει δε τάσα ο Χωστίδη.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σα πάρκε με ίσμα washing powder ο Χωστίδη.
2: Έσμα washing powder. Μάρα είμαι ζή μοχοκορτά national or multinational. Καπνέιβολ washing powder βορίβι. Κούρσε αξάρ γυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα κιλεβε χάρβαχτε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα washing powder βορτάλ σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
2: अच्छा मिस जी ब्याहे कुर्ता जहर सरबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पयुक्षले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजुत की ओ दिनोर सरफे पर इस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी ओ बला खबर अदा कपड़े सा पई पवा लोसीना न खर पवी
2: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला वी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने গলসে আন্দ্রনলা কি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ এর সাহেব স্যার অর্ডার তে মিলা বিজি
3: आपकी पसंद आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती सब कुछ एक ही जगह जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए रेडियो अमन अटासी शेरी चार करक आपकी अपनी आवाज
4: खबर को द लोबुद मैदान वी यादा पार्लियामान मसलक इलाकाई वी या खामी خبر کو ستاسوی یا ستاسو د چاپریال رسوبا ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک
5: امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुफ्त पैगाम पिलाए और माशरे को जोड़ने में हमारा साथ दे।
1: खबर को द लोबुद मैदान भी यादा पार्लियमान, मसलक इलाकाई भी या कामी, खबर को स्तास हुई या स्तासुद चापेरियाल, रसूबा स्तास वक द वागदार नतर बादारा। नो तरला सकोल शे तासु मौजूआती इल्मी और सेंसी मालूमात پا اخباری نڑے کی دا خپل قربا احمد زار سرا صرف اور صرف پا امن ریڈیو نیٹورک۔ امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن۔

मैं हूँ असमनूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमक

अच्छा जी, दिन लवान बिल्कुल इश्मा कॉस्मेटिक सुन रहा हूँ प्रोडक्ट जी। हर कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर के तो सुबह आसानी से मिले भी जी। मुख्तलिफ जुकुम प्रोडक्ट जी, हर प्रोडक्ट अखबल फायदे दी नबिल के जरूरी से मलवल से इश्मा कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स। अच्छा जी बिल्कुल कॉल वेहा से मिलेगी प्रोग्राम से हो आगे नमक इधर देवे बिल्कुल चे तो सिक्किम दुकानदार ना इश्मा कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स उखले नागे नोम चुकम देगे एड्रेस जरूर सर शरीक भाई मजे के चलते कि डेर दासी मीनवाल बबी छे आगे इश्मा कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को खुसल गोड़ी हो आगे ताल तक इखबल इलाके से कॉस्मेटिक दिकोन वर्ता पता नहीं था नो बिल्कुल आगे एड्रेस जरूर अर्थरा शरीक भाई इन्हें पता है जरूर अर्थरा शरीक भाई।

अच्छा जी बिल्कुल, मैसेज कराई दे चाओ देखियो जी ना, मैसेज कराई दे। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम नियाज मोहम्मद बिठनी लकी मरवतना तरीक भाई तो था असलाम। ओ मौलाना ताज मोहम्मद हकानी तहा सलाम। इश्मा हर्बल आयल और टूथ पाउडर शेष रिजल्ट दाई फाई था डेरा मने ना, थैंक यू सो मच यो जहान मने ना। दिन लबे जी सलाम एंड वेलकम तारिक भाई, आवाज ओके दे 88.4 रेडियो बांदे आई एम फाइका एंड कायनात फातिमा लंडीवा सलाम एवर्ड का लाइवता हानी अरिशा हटाइका जलाल पलव शाह और मलाला भानता हाँ सही डेरा बनाना। थैंक यू सो मच फाइका और फातिमा कायनात यू जहान बनाना प्रोग्राम से मैसेज होगा बिल्कुल पा लंडीबे के तुसा जमील खान से सरा द इश्मा टोल प्रोडक्ट में लवी जी।

0: अच्छा जी बिल्कुल प्रोग्राम की कॉल हमसे मिलेगी और मैसेज हमसे मिलेगी कॉल तरफ तरह सी प्रोग्राम से कॉल से मिलेगी सो को देखिए ना दे किसी पर कलवानी चाहिए फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो सो को देखिए ना दे अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम सो खबर की क्यों जरा आवाज दे कटकी जी सो खबर की क्यों जरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक किम देना
1: हेलो
0: जी जी किम देना खबर के भाई हाँ जी तस आवाज सही मत है ना रजी दोबारा कॉल कवली

अच्छा जी बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल कंटिन्यू सुती हो दस ए सो मिनट दोबारा बिल्कुल प्रोग्राम चुकम दे मे बी ट्रांसमिशन चुकम दे ऑफ जी टिक था नो सो मिनट बाद चुकम दे मे बी इंशाल्लाह दोबारा हाजिरी जी नो ट्रांसमिशन चुकम दे मतलब नमालूम अखबर चुकम दे आगा बिल्कुल ऑफ कीजिए टिक शुआ नवागे ना बाद दोबारा तो उसे खिदमत की चुकम दे इसमें कश्मीर जी को प्रोग्राम दे खिदमत के दोबारा चुकम दे हाजिरी जो नो ट्रांसमिशन बाद बिल्कुल सो मिनट दोबारा चुकम दे बंद कीजिए सही ना यानी ऑफ ऑफ जी बिया बचुकम दे हाजिरी जो

बिल्कुल चर्चा प्रोग्राम प्रोग्राम वेलकम वेलकम बिल्कुल हर मजदिगार मजदिगार ये दीजिए मैं मजदिगार बने तुस्सा मजदिगार रंगुना प्रोग्राम पेश करी देना बिल्कुल आगा पेशकवी सो का पेशकवी करना इंजीनियर मसदो बिल्कुल रोगली जबरदस्त प्रोग्राम सरा जो बिल्कुल चर्चा चर्चा चर्चा चर्चा लिसनर दी प्रोग्राम प्रोग्राम ना फंदीना वो मजे वो खनी बिल्कुल प्रोग्राम है साजोड़ा से प्रोग्राम पर बिल्कुल प्रोग्राम से काल का लिखा ले पर 09272921 यानी 09272921 दोनों बने बिल्कुल काल का प्रोग्राम है साजोड़ा से।

0: रखिबो रखिबो ओरवा ओरवा ओरवा दस एक बार अंदर टोल मरवारी की
1: गिरचा पे जी बाराम ना जुड़ जमा वही तो पुना राना तो कुतला सुना
0: नो बिल्कुल अरुधिंग दाशा है गाने गाने गाने गाने गाने गाने ओरवे
1: दस
0: एक बार अंदर टोल मरवारी

नची बिल्कुल लगा हूँ मैं सर सारा बिल्कुल नंदे बरौनी बरौनी के मैं सुंदर थी लारे टोल लिसनर टोल की मारे विदिंग की बिल्कुल आगे परो मैंने बिल्कुल चलाई और दे सारा सारा बिल्कुल प्रोग्राम से तो से गढ़ी दो सरकला से प्रोग्राम देख पल दे यानी दे हजारों सरों के जरा प्रोग्राम सरंग रहा है ओदा बरौनी बरनी मौसम दा ओदा बरौनी बरनी सुंदर भी और सारा

बिल्कुल प्रोग्राम से मैं तुझे रोक लिया अगर तब से मिला हूँ रखी फटक जूता मारना वैसे ना हकीकत से सामना हुआ तो पता चलेगा। अच्छा हकीकत से सामना हुआ तो पता चलेगा लोग सिर्फ बात से आप रहते हो वहाँ जबरदस्ती हो जहाँ होना वैसे बदले बदले से हो। अच्छा अच्छा बदले बदले से हो क्या बात होगी हमसे नाराज हो तो क्या कसूरवार से मुलाकात होगी। देर जूता बेहद मरना बेहद मरना।

वैसे मैं क्यूटर रिश्ता में दिवाई ऑल फ्रेंड को दिल वाला सलाम। मैं बहुत बिजी हूँ, सब के नाम नहीं ले सकते। ओके क्यूटर खान में खत्म रहना। वैसे मैं दिवाई तारिक भाई था, सोनी खान था, ओ सलोम मेरे लिए तेरे बिन रवा सॉन्ग प्ले करो। छोटी अक्सा इधर से था मना, छोटी अक्सा बिल्कुल इंशाल्लाह बल प्रोग्राम शो जरूर उधर प्ले कहूँ सही तो। वैसे मैंने एक पलंग बाबा से पूछा, बाबा मेरे यार मुझसे नाराज है, इसका कोई हाल बताओ। मुस्कुरा कर बोला, ए बेवफा यार, का कोई हाल होता आज मलंग ना होता।

नसीब से तरहान सलाम भी भाई, क्या हाल है, शो जबरदस्त है, तरहान कैसे हैं, वही सलाम तो रुशेखान आईना खाफसा दिलरबा सोनेहान हमारे अरमान हम रखना समहा होरेन गुलशन सनम मुस्कान नादी बहार फातिमा वजीर सने फरिश्ता और छोटी सागा छोटा मरवा छोटे मैं भी छो और जाला मरो तास मसी बहन आल्फ स्वीट फ्रेंड को सलाम वालेकुम सलाम डेर जूता बेहद अमाना वैसे मिटी मारे अरमान पाजिम के लिखे वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। ओके भाई देर जो तमन्ना।

खुशखबरी खुशखबरी, हुज़ैफ़ा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। बालों को गन्ना लंबा करता है। खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म। मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है। हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तिल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवाथुर निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तिल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए दसर वेख्तान गुरजीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तिल पपल सरबा ने मालश की नो दद पसरबो दुबारा नवी वेश्तान पैदाशी। शिफा तिल वेश्तान गुरजवल बंदवी वेख्तान गण और उजद कवि देसर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवि जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवलेशे 0331 397 36 36।

0: खाके जी वेलकम बैक इस अलीबिया पर प्रोग्राम से शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान आर जे शाहिद खान दर ता मुखातिब लाइव कॉल सिलसिला शुरू करूं जी सोक तिर सर किम जिने कॉल करे अस्सलाम वालेकुम जी आवाज दर सर कट की जी सो खबर कहे
1: आज
0: अनूर सड़ी माश से पखेर आले दस खुजर तो खदाई दे मारशा तो
1: शाही
0: है डेरा वास्ता ना ना उस नष्ट बरूम तेर सा हवे तेरे से जलाई तेरा शुआ उसको बस खेर उखेर आता तुझ पता उस बरूम लग गया था कसम वो दारे दादा थे वो डरा वाले बस उस वो दारे दादा तो खूब अपा मामू पर शाटिंग गए चे दे ना यू में ना सी खावा दो तेजा दो चे यू में ना सी नूर दास के नवे सदर वोड़ी दी जा नूर प्रोग्राम तो दिसर वोड़ी तर तो यहाँ शाबाश तू अगर शादी चाहे तब यही चे मोमिन पटिका तो या मोमिन पटिका आय शाबाश मोमिन पटिका जानू चलो अपन ने पैगाम ये वर के जी शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से कला प्रोडक्ट खोले मार्केट था दो नंबर प्रोडक्ट द शिफा पर नंबर खोली थी नुकान ली तुसे जैनूर खदा खबर है कभी कला हाँ तुसे शिफा प्रोडक्ट खोले नवाल ये कैसे चिदा दे खुदिफा कंपनी दो बिया पे कैसे चिदा खुदिफा कंपनी नंबर पे निकला है और कना नुबिया खोले आयशा बस नुबासो सो इंशाल्लाह खलक पूछ वाल का ना जैनूर ओके जी बस सही

खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रथ, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: कल की यादें, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ी एक आवाज़, रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: कल की यादें, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ी एक आवाज़, रेडियो अमन 88.4 तरक, हर वक्त आपके साथ।

का और राणा का जमा जवन तोरा थिया राधा का राजे दर्दुनो इंतहाद करा से ब्यादो को इब्तिदाद करा से।

ओके okay, जी वही कहना चाहिए अगेन पापा की पुरी और द ओनली वन दिलरुबा हटकम भाई सॉन्ग चिकन आप ले का ओके जी प्रोग्राम सरोवे कुशश कौन सा खुदा परमेशी प्रोग्राम बिल्कुल नदा है

ओके नेक्स्ट ढिंढरो बाबा छे, मैंने एक मलंग बाबा से पूछा, बाबा अरे यार मुझसे नाराज है, इसका कोई हल बताओ। मुस्कुरा कर बोले, अगर बेवफा यार का कोई हल होता तो आज मैं मलंग न होता। सही यू जहान मनना। नेक्स्ट मी क्यूटर शिहान स्वीट भैजानी वाह जी वाह, सो बार सत के हो

चाचा सौ बार सदके होकर भी ये चाहता है दिल सौ बार और आप पे कुर्बान हो जाए। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, सब पोएट्री अच्छी थी, बहुत खूब थे सब पोएट्री, लेकिन बाबा वाली दोनों पोएट्री बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। सही, थैंक यू सो वेरी मच क्योटो शिखानी स्वीट सिस्टर जानी, थैंक यू सो वेरी मच। इट्स मी तरहान, राज बरू हो सके तो ये वाला सॉन्ग प्ले करो, शब गम मुझसे मिला कर ऐसे रोए।

कहना है चिके के भाई नेक्स्ट जो मैथ है अच्छा अच्छा अच्छा भाई ने मैं कहना हाँ तो गजल हाँ ओ या लेकिन माँ वाले भाई नष्ट है शाह मारी आरमान सही था कोशिश पकोशा

ओके जी वही छेड़ मी तरह हंद राज ब्रो, पूरा एक हफ्ता इंतजार करती हूँ उस शो के लिए और आप कहते हो कि न सुनो, ये तो मेरा फेवरेट शो है, किसी और के बदल जाने का क्या शिकवा करना, आज खुद पर नजर डाली तो खुद भी पहले जैसे नहीं थे। के ब्रो हमेशा खुश रहो, थैंक्स मारिया अरमान एंड रोशी खान। दासी खबर है ना था वो तो सीधा खबर है, मैसेज के कड़े वाद सीधा शोर हुआ कहना भी ढेर है सर दुखी छो नो रहे कहना न मोच यो इंसान चेगा ढेर है सर सेट के जी दुखी के जी कहना भी इंसान तो सेट कबल नहीं पीछा इससे कह मैं खबर है यो जहान मन ना वाई छे आई एम शाकी आपके पोइट्री और मेरे दिल के राज बताते हो। ओके जी यो जहान मन ना इट्स मी तारहान के ब्रो थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे, अल्लाह आपको कामयाब करे। सो यो जहान मन दा ठोला और इदुन को नोर मैसेज जरूरत मका वाई बिल्कुल टाइम सर तरह से इजाजत पर देना वाड़ा बिल्कुल पदो आखिरी शेर उन सर वही टाइम खत्म शुरू सत पर दरना वाड़म टाइम खत्म शुरू सत पर दरना वाड़म डेर पमीना मोहब्बत पे दरना वाड़म और जिंदगी ची वफा उकड़ा ब्याह राशम द इज्जत बदल इज्जत पर दरना वाड़म لکرونا خویان دی خپلو کی نازی گی داس خکول شرارت پا در نغوانم او چی زماجم دون پی نور هم خیسته شی بس یو داس نصیحت پا در نغوانم چرتوی خمیش خوشحال را تاو سی راس هم درد بس اجازت پا در نغوانم خوشحال را تاو سی او بلکش پامو پا خیر گونا او سبینه چی داغام روخان گونا او سپرو که موتا اجازت دیلو الاپو ام